0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC के संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। डॉ शर्मा अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉ शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के संसद सदस्य हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों

0: उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी वे बातचीत करेंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्री बेटेल चेन्नई भी जाएंगे और आईआईटी मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड एनबीईएमएस ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर नीट पीजी की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, "Today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world?" The Prime Minister was addressing centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce at Delhi University yesterday evening. Mr. Modi said, "India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength." He said, "India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism." He said, "The world is watching India become the fastest growing major economy."
2: Duniya Bharat ko fragile 5 bata rahi thi. आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister detailed that between April and June, electricity production increased by 9%. Mr. Modi said overall vehicle sales surged by over 20% during the period, driven by 20% growth in two-wheelers and nearly 30% in three-wheelers.

0: మీరింతవరకు గుర్తుకొచ్చిన
1: సమాచార్ కి సాత్ మే నిఖిల్ కుమార్. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा वित्त कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों. वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं.
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं. अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है.
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है. 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है. और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है.
1: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे. वे गृह मंत्रालय की बैठक का नेतृत्व करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे. गृहमंत्री 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे. डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है. वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे. डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं. छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है. अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया है. इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा.

0: मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण का सहारा भी लिया जा रहा है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा हुई है। मिस्र की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे जो मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चा माल आयात करता था। आरोपियों के पास अवैध हथियार होने की भी बात सामने आई है। सारा खलीफा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए कार्य करना है। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। विश्व की 5वें नंबर की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरियन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन बनाए थे, जवाब में भारतीय टीम ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय लालिमा अनेजा डैंग। Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, "Today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world?" Prime Minister was addressing centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, at the Delhi University yesterday evening.
2: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: Mr. Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said the world is watching India become the fastest growing major economy. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma has been appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. Dr. Sharma will succeed Admiral D.K. Joshi, retired, who took over as Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands on October 8, 2017. Dr. Sharma, 62, earlier served as Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh. His Rajya Sabha term was to end on November the 25th. A Rashtrapati Bhavan communique issued late last night said that Dr. Sharma's appointment will come into effect from the date he assumes charge of his office. More than 500 institutional investors, finance ministers and business leaders will participate in the inaugural iBRICS summit on the sidelines of BRICS summit in New Delhi on 12th and 13th of this month. The two-day summit is designed to connect sovereign capital with bankable infrastructure, energy and digital capacity projects across 21 BRICS member states and partner nations. Sovereign wealth funds, pension funds and family offices attending the iBRICS summit manage a total wealth of $1 trillion. They will discuss cross-border investments, non-dollar settlements and payment systems among BRICS economies. As BRICS Chair 2026, India will be hosting the 18th BRICS summit on September 12th and 13th at Bharat Mandapam in New Delhi.

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया, उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं चौथा और अंतिम भाग।
1: चूंकि बातें गौरी जी की हो रही हैं, तो इसी विषय पर बना रहता हूँ। आपके निर्देशन में उन्होंने किन नाटकों में काम किया?
2: काफी जुलवा में ही थी पहले तो
1: जी,
2: और जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। मतलब जितने शो हो गए, शायद वो एक आध दो शो में नहीं थी, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन लगभग मैं नहीं होता था कई बार शो में, लेकिन वो जरूर होती थी। तो उन्होंने रेणुका करके उसका कैरेक्टर था सयाजी, और उनका पेयर होता था वो साथ में, वो भी जोगतीन कम्युनिटी की थी और सयाजी जोगत्या था, तो उसको कर्जा देने वाली, उससे वसूलने वाली, ऐसी एक थोड़ी सी रिच उन्हीं के कम्युनिटी की पर धाकड़ कैरेक्टर था, उन्होंने वो बखूबी निभाया। उसके बाद एक झुंज वारियाशी जो मैंने नाटक किया, उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया, क्योंकि उस पूरे नाटक में उनके हिस्से में केवल दो छोटे छोटे सीन्स थे।
1: ओके
2: लेकिन पूरा नाटक उनके हस्बैंड जो जर्नलिस्ट होता है, उसके करियर को लोगों ने कैसे बर्बाद किया, बड़ा पॉलिटिशियन बनने के लिए, बड़े अहदे पे जाने के लिए, और वो सारा कैबिन में हो रहा है और ये कैबिन के बाहर बैठी हुई है, और उनको पीठ ऑडियंस की तरफ करके बिठाया था मैंने। वो पता चलता था इनके पीठ से कि ये अंदर के इसको कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, इसके ऊपर क्या क्या परिणाम हो रहा है। और जब वो अंदर आके बर्स्ट आउट होती थी, दैट सीन वॉज मेमोरेबल सीन इन दैट प्ले। उसके पास मी राष्ट्रपति नाम का प्ले मैंने किया था, उसमें भी उन्होंने बहुत मेजर रोल निभाया। तो मुझे लगता है यही दो तीन चार नाटक थे। उसके बाद फिर मैं बाहर भी नाटक करने लगा, व्यावसायिक भी नाटक करने लगा। फिर उसके बाद ये भी हो गया कि चार पांच साल पर रुत्वी का जन्म हुआ, तो वो स्कूल में काम करती थी, हफ्ते में दो बार सेंट कोलंबा जो स्कूल थी वहां जाके बच्चों के साथ क्लास लेती थी, तो इसीलिए वो भी एक उनके लिए मर्यादा हो गई कि व्यावसायिक नाटकों में जाना है तो फिर लंबा जाना पड़ता है, 10-15 दिन के टूर लगते थे उस समय पर। उन्होंने अपने लेवल पे स्पर्श नाम के नाटक में काम किया, जो दि गोवा हिंदू एसोसिएशन का व्यावसायिक नाटक था। फिर उन्होंने हैंड्सअप नाम के नाटक में काम किया, जो व्यावसायिक नाटक था। तो उन्होंने अपने लेवल पे बहुत सारे, तू का जातो वैकुंठाला नाम के नाटक में काम किया, तो बहुत सारे नाटकों में काम किया उन्होंने, सीरियल में काम किया। सह्याद्री की बहुत फेमस इर्जिक नाम की एक धारा चली थी, उसमें उन्होंने कई सारे एपिसोड किए। विजय मेहता के साथ लाइफ लाइन जो उन्होंने सीरियल पहली डायरेक्ट की थी उसमें काम किया। गोटिया जो सीरियल चल रही थी उसमें भी उन्होंने काम किया, बहुत सारी सीरियल्स में उन्होंने काम किया, फिल्मों में काम किया। फिर उसके आगे बहुत सारी महत्वपूर्ण फिल्मों में भी काम किया। अशोक सराफ जी के साथ उन्होंने फिल्म संजय सुरकर ने डायरेक्ट की हुई चौकट राजा, उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले किया। उसके बाद अक्षय कुमार जी के साथ खिलाड़ी 420 में उन्होंने हिंदी में काम किया
1: जी।
2: फिर मराठी में और सारी फिल्मों में काम किया, और खास उनका बहुत ज्यादा पॉपुलर काम रहा है वो देवयानी नाम की जो सीरियल लगातार 3-4.5 साल चली, उसमें मेजर रोल था उनका, और जिसको हाईएस्ट टीआरपी थी उस सीरियल को। तो उसके बाद उन्होंने तय किया कि मैं दिल्ली से आता था तब भी वो 30 दिन शूटिंग करती थी, और कभी कभी संडे को एक स्पेशल एपिसोड होता था उसके लिए रात दिन वो भी काम करती थी। ऋत्विक भी उसी समय सीरियल में काम करता था लीड रोल में, मानसी था चित्रकार तो स्टार प्रवाह के ऊपर। तो मैं जब दिल्ली में आता था ये दोनों बिजी होते थे, और ये दिल्ली आते थे कभी कभी जब मैं दिल्ली में था तब, तो ये जैसे ही पहुंचते थे तो दूसरे दिन सुबह फोन आता था कि कल के एपिसोड में प्रॉब्लम हो गया, आप तुरंत निकल आइए।

0: तो एक या दो दिन से ज्यादा हम रह नहीं पाते थे, तो फिर उन्होंने दोनों ने भी यह तय किया वो सीरियल कंप्लीट करने के बाद कि अब हम ज्यादा समय सीरियल में नहीं देंगे, फिल्म और नाटक यही। और उनका सबसे अच्छा मुझे लगा कि पैरेलल जो उन्होंने करियर किया वो चिल्ड्रन थिएटर में।
1: जी, बहुत बड़ा योगदान,
0: द लीडिंग थिएटर चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट इन महाराष्ट्र, कि बहुत सारे बच्चों को उन्होंने करियर तक पहुंचाने का काम किया है। और अपने किस्म का वो नाटक करती है बच्चों के साथ, उनको एक अपना नैक है, उनकी अपनी एक मेथोडोलॉजी बनी है कि 10 दिन में वो बच्चों को पूरा आर पार बदल देती हैं और नाटक भी करवाती हैं अंत में, और जो नाटक बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल भी होते हैं, ह्यूमरस भी होते हैं और कुछ मैसेज लेके भी वो नाटक करती हैं। तो इसलिए अपने आप में वो अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है, वो एक्ट्रेस भी है, थिएटर की भी है, सिनेमा की भी है, सीरियल की भी है, ये तीनों मीडिया में वो कम्फर्टेबल है। और चौथा है वो चिल्ड्रन थिएटर की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूटर है। मुझे लगता है कि सुधा कर्मरकर और दो तीन सुलभा देशपांडे और इनके बाद बहुत ज्यादा कांचन सोनटक्की जी के बाद मराठी थिएटर में बहुत ज्यादा उन्होंने चिल्ड्रन थिएटर में काम किया है।
1: जी, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: जब आपके शुरुआती दो तीन नाटक बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए और ये लगा कि ये अलग ताप के नाटक हैं, इनके तेवर बहुत अलग हैं, और आपने उसमें अपना बहुत कुछ झोंक दिया था और ये उम्मीद की जा रही थी कि इस डायरेक्टर के तत्व जल्दी चुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो क्या चीज थी जो लगातार आपको आगे प्रेरित करती रही? और दूसरा, दलित थिएटर मूवमेंट को आप लगातार जिंदा रखे रहे?
1: दलित थिएटर मूवमेंट की बात तो थी, जैसे मैंने कहा कि दो नाटक में तो मैं उसका हीरो था
0: जी,
1: नायक की भूमिका में था। उसके बाद दिल्ली जाने के बाद एक्चुअल उस मूवमेंट से मेरा संबंध थोड़ा सा विरल हो गया, कम हो गया, लेकिन मैं जो नाटक करता रहा
0: यस,
1: उसमें वो तत्व जो है, मतलब मैंने जिस काम के लिए मैं नाटक में आया था, मैं आज तक उसको भूला नहीं हूं। मैं नाटक में क्यों हूं ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। मुझे कौन सा नाटक करना है ये भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। मुझे कौन सा नाटक नहीं करना है, कितना भी पैसा दे दो, वो भी मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। तो इसलिए मेरे नाटकों के जो विषय है, चाहे वो जुलवा है या जाने मन है, मुझे लगता है जिन लोगों की अभिव्यक्ति को, जिन लोगों की जिंदगी को, जिन लोगों के दबेपन को आवाज नहीं मिली है, मुझे लगता है उनको मैं अपने नाटक का विषय बनाता हूं।
0: हमेशा हाशिए पर जो लोग हैं,
1: हाँ, हाशिए पे जो लोग हैं, जो गांव के बाहर है, गांव के अंदर के भी नाटक किए मैंने, पर जो ज्यादातर जो विषय चुने मैंने वो गांव के बाहर है, उनको गांव में एंट्री नहीं है। अब देखिए, झुलवा जोकते जोकतीनी पर है, एक झुंझ वारियाशी एब्सोल्युटली डायरेक्ट ये मेन स्ट्रीम कंटेंट था कि किस तरीके का भ्रष्टाचार पूरे सत्ता कारण में हो रहा है और उसमें इनोसेंट टैलेंट का बलि कैसे चढ़ाया जाता है, और वो भी जो जर्नलिस्ट है। उसके बाद मैंने नाटक किया दूसरा सामना, जो सतीश आलेकर जी ने लिखा, जो हमारी ये शुगर सहकार मूवमेंट है उसके अंदर किस तरीके से फिर वही दलित का बलि कैसे चढ़ाया जाता है। पहला सामना तो जो था वो फिल्म थी, उसका सिक्वेल था जो लिखा गया कि जो दलित का बेटा है जो आईएएस है और आज वो अपर कास्ट का है क्योंकि उसको अडॉप्ट किया गया और उसको मालूम नहीं, और एक दिन अचानक उसको मालूम हो जाता है कि वो जिस जाति से और जिस संस्कार को बिलोंग करता है उसका है ही नहीं, जो भी आईएएस होने के बावजूद भी वो तो है दलित। उसके बाद जो टूटना है उसका, वो टूटना विक्रम गोखले वो रोल करते थे और दूसरा विनय आप्टे करते थे और तीसरा इला भाटे का पहला नाटक था
0: जी।
1: तो ये उस नाटक में भी वही बात अलग किस्म से थी, नाती गोती था, एक मिडिल क्लास फैमिली में एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा होने के बाद उस फैमिली की वाताहत कैसे होती है, उस फैमिली की जिसको हम मराठी में वाट कैसे लग जाती है और उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है, इस तरीके का विषय था
0: जी।
1: जाने मन का बिल्कुल किन्नरों के जीवन पे विषय था उसका, लड़ी नजरिया पे डेमोक्रेसी की कैसी हम लोगों ने 12 बजा दिए हैं उस कॉन्सेप्ट के, और हम अपनी तरीके की डेमोक्रेसी कैसे लाद रहे हैं, ये विषय था। तो जितने भी विषय हैं, ती फुलराणी तक रणांगण एक ऐसा विषय था कि ये भारतीय आदमी जीतता क्यों नहीं है, क्या ऐसे उसमें खून में, संस्कार में, उसके जीवन में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा वो विष घोला है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कोऑपरेट ही नहीं करता, ये बेदिली है, ये धोखा देना है, ये भारतीय स्वभाव में कैसे, और उसके बाद ज्यादा तो मराठी में कैसे है, पानीपत का थर्ड वॉर हम हारे क्या जीते, इसको लेकर वो सारा का सारा असेसमेंट था भारतीय मन का, भारतीय स्वभाव का, बिल्कुल बहुत तटस्थता से किया हुआ और जो नाटक बहुत अंतर्मुख करता था
0: जी,
1: और जिसके 700-750 शो, मतलब दैट वाज सपोज टू बी फर्स्ट 70 mm प्ले ऑन मराठी स्टेज,
0: बिल्कुल,
1: जिसमें भानु अथैया गांधी फिल्म के लिए जिनको ऑस्कर मिला था, उन्होंने जीवन में पहली बार नाटक के लिए कॉस्ट्यूम किए,
0: वाह,
1: मंगेश पाड़गांवकर जी ने गाने लिखे,
0: क्या बात है,
1: ये ऐसे ऐसे दिग्गज, पहले कुसुमाग्रज गाने लिखने वाले थे पर उनकी तबीयत ठीक नहीं रही, फिर उसके बाद फिर हमने मंगेश पाड़गांवकर जी से गाने लिखवाए, अनंत अम्मेम्बल ने उसमें म्यूजिक किया, ये सारा का सारा मुझे लगता है कि वो भी एक अलग किस्म का विषय था। तो लेट्स पीढ़ी दर पीढ़ी हम ये कह रहे कि हमारे पास जीतने का जज्बा क्यों नहीं है, जीतने के बाद भी हमारे आसपास क्या है कि दिल्ली मराठों ने जीतने के बाद भी उस समय मराठों को दिल्ली के गद्दे पे नहीं बिठाया, हमारे नेता ने क्या थी उसके पीछे की सोच, क्योंकि उससे पहले ही हमारे कारोबारियों ने दिल्ली पंजाब के राज्यों को भेज दी थी
0: जी।
1: तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर कुरघोड़ी करने का स्वभाव है, एक तरीके से धोखा देने का स्वभाव है, कभी भी कोई भी आदमी एक दूसरे से बेदिली करने का स्वभाव जो है, इसको उस नाटक में क्या कहते हसीये पे रखा था। और वो एक नाटक लोगों को लगा था पानीपत थर्ड यू आर जैसे हार गए वैसे ये नाटक भी बहुत जोर से गिरेगा, उसकी आवाज सुनने के लिए सारे कान बेताब थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस नाटक ने जो खौफ है मराठी मानस में, कुछ भी हुआ तो पानीपत हुआ बोलते हैं हम उसका, डिजास्टरस एक्सपीरियंस इज पानीपत, तो उस पानीपत शब्द से हमने उस नाटक ने लोगों को बाहर निकालने का काम किया। पानीपत वॉज नॉट डिजास्टर।

0: समाज को समृद्ध भी करना है, संवेदनशील भी करना है और आगे अच्छा समाज बनाने के लिए सोच के लेवल पर अग्रेसर भी बनाना है। इसके लिए ये मुझे लगता है कला दालन है,
1: बिल्कुल
0: ये संस्कृति का दालन यही है कि वो आपको एनरिच करता है
1: जी,
0: एक आपके दायरे का विस्तार करता है, सोच का विस्तार करता है, आपकी दिमाग में जो दीवारें आपने बनाई है उसको ढहाने का काम करता है, क्योंकि आखिरी इंसान और आप दोनों एक ही है, क्योंकि आप एक भूमि के हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप एक हैं क्योंकि नैसर्गिक अधिकार आपको दोनों को एक ही दिया है और जिसका नाम है शांति से जीना। मुझे लगता है वो नाटक का मूल पर्पज है। अब वो पर्पज हम किस एंगल से दिखाए वो आपका तरीका है। अगर हम बीरबल की एंगल से दिखाएं तो बीरबल वही करता था जो अकबर को विसंगतियों का, विरोधाभास का वो आईना ही तो दिखाता था। वो भी नाटक ना करे तो कौन करेगा, वो भी सिनेमा ना करेगा तो कौन करेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी व्यवस्था में नाटक का रोल यही होता है, व्यवस्था को अपना मन खुला होकर। इसीलिए एक कहावत है ना कि एक ऐसा कहते हैं कि अगर किसी भी समाज को आपको समझना है, मान लीजिए आप यूरोप गए या किसी भी समाज में कोई भी देश में चले गए, आपको उस समाज को फास्ट समझना है तो आप जाके उसके 5-6 नाटक देख लीजिए।
1: क्या बात है,
0: उस समाज का आकलन उस 5-6-7-8 नाटकों में से जो आपको जितने जल्दी मिलेगा उतना एक साल भर रहने से नहीं मिलेगा। क्योंकि वो आईना दिखाता है। अगर ये सच्चाई है तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये निराशावाद है, ये तुलनात्मक फैसिलिटी का कम आंकना है एक दूसरे को, ये जो दीवारें खड़ी करना है इंसान इंसान में, वो चाहे धर्म की है, जाति की है, परंपरा की है, वर्ण की है, वर्ग की है, कुल की है, परिवार की है, इससे क्या बनने वाला है
1: जी?
0: इससे कुछ नहीं बनने वाला। अगर हमें एक स्ट्रेंथफुल देश बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, तो हमें सारे समाज की सारी क्षमताओं को साथ लेकर इस देश का जब विकास करेंगे तो हमें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत

0: नहीं है, आप हमें विश्व गुरु बनाइए
1: जी। एनसीपीए में एक रिकॉर्ड आपने कायम किया था, एक ही दिन में 3 अलग अलग भाषाओं के नाटक
0: जी,
1: हुए।
0: ये मध्यम व्यायोग नाटक जो था, इसको मैंने हमारे एकेडमी के विद्यार्थियों के लिए एज अ डेमो ऑफ क्लासिकल इंडियन थिएटर किया था। उसके बाद एक 10-12 शो के बाद वो खत्म हो गया और मैं भूल गया उस नाटक को। ये 2004 में किया था, 5 साल में वो बैच निकल गई, उसके बाद भूल गए। कुछ सालों बाद जैसे मैंने कहा कि भास ने जो लिखे हुए नाटक में जो अधूरे छोड़े हुए थ्रेड्स है उसका कहीं ना कहीं मुझे हंट आउट करने लगे। बेटा भी पूछ रहा है और माता भी पूछ रही हिडम्बा भीम जी को, वो सारे सवाल बाद में दिखाई देने लगे यार। मैंने कहा कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग नाटक हो सकता है, इसका नया संस्करण तैयार करना पड़ेगा। ये रंगावृति नई तैयार करनी पड़ेगी, जहां भास रुके हैं उसके आगे भी तो हम नाटक को ले जा सकते हैं। इसको लेके हमने वो नाटक करने की बात सोची। पहले मराठी में करते हैं, फिर करते करते पता चला कि हम हिंदी में क्यों ना करें इसको।
1: क्या बात है।
0: तो हमने हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके उसकी शुरुआत की। फिर ऐसा लगा कि यार ये हिंदी मराठी तो ठीक है, लेकिन जो कुछ मराठी या हिंदी भाषी लोग हैं, जिसको जब तक आप अंग्रेजी में कुछ नहीं करते तब तक वो आपको समझना नहीं चाहते, अपनी संस्कृति को समझना नहीं चाहते, उनके लिए हम अंग्रेजी क्यों ना करें।
1: अब तीन भाषाएं हो गई।
0: तो तीन भाषाओं में हमको लगा कि एक ही टीम के साथ करें, नहीं तो बड़ी सर्कस हो जाती। तो इसीलिए सारे मराठी स्पीकिंग एक्टर्स है मूलतः, उसी को हिंदी भी सिखाई। उसमें से बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी आती थी, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आती थी, तो वो अंग्रेजी भी हमारी इंडियन इंग्लिश है। तो ये सारे तीनों भाषाओं में 3 जुलाई 2011 को एनसीपीए के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में इस नाटक को लेके हमने सोचा कि इसका शुभारंभ करेंगे
1: जी,
0: और तीनों नाटक एक ही दिन में ओपन करेंगे। एक ही टीम, एक ही डेट, एक ही थिएटर।
1: वाह।
0: तो हमने दोपहर 2 बजे मराठी में नाटक ओपन किया, वही नाटक प्रिया बावरी। उसके 3 अलग अलग नाम जानबूझ के रखे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता कि मराठी कौन सा है, हिंदी कौन सा है। दोपहर 4:30 बजे हमने वही से नाटक किया मोहे पिया हिंदी में, और शाम को 7 बजे वही नाटक किया हमने ओ माई लव इस नाम से। वही नाटक तीनों भाषाओं में, सेम फॉर्म, सेम कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग इज सेम। भाषा अलग है, गाने अलग है, सब अलग है।
1: गजब।
0: और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया, और आज तक वो विश्व रिकॉर्ड ऐसे ही है। अभी तक किसी ने तोड़ने की कोशिश नहीं की उसको, तो हम ही शायद तोड़ने की कोशिश करेंगे कि इसको और एक भाषा में, गुजराती में करके 4 भाषाओं में एक ही दिन में कर लेंगे। तो इसको लेकर ऐसा काम हो गया और वो नाटक ने पूरे देश में गजब ढा दिया
1: जी।
0: मराठी में हमने 150-200 शो किए, हिंदी में अभी भी वो चल रहा है मोहे पिया। अभी 300 शो होने को आए हैं अलग से हिंदी में
1: जी,
0: वो कभी हम सेलिब्रेट करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। अंग्रेजी के भी हमने 70-75 शो किए। तो हम ये 15 दिन के नोटिस पे हम किसी भी भाषा में ये नाटक कर सकते हैं।
1: क्या कमाल है।
0: हाँ, तो अभी बहुत सारे भारत भवन में भी, दिल्ली में भी संगीत नाटक अकादमी है या और कोई है, वो चाह रहे कि ये इस तरीके का प्रयोग हम दिल्ली में भी करें या और शहरों में भी करें। इस तरीके के आमंत्रण न्योते आ रहे हैं, अब हम उसके ऊपर भी सोच रहे हैं।
1: एक और कमाल है आपका, NSD के दोनों अवार्ड आपको मिले।
0: जैसे एक संगीत, क्योंकि हमारे देश में एक ही अवार्ड था जो संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिलने के बाद एक आपका रुतबा माना जाता था, कि आपके योगदान को माना जाता था। मैं ये अनुपम खेर जी चेयरमैन थे तब, उन्होंने मुझे सोसाइटी का मेंबर बनाया। उसी समय हमने ये कहा कि भाई पूरे देश को, संगीत नाटक अकादमी तो पूरे देश को लेकर काम करती है, अब उसमें ज्यादातर अलग अलग भाषाओं में एनएसडी के लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत है, पर अवार्ड देते समय ये तो ध्यान में रखा जाएगा कि भाई हर साल एनएसडी एल्यूमिनाई को तो वहां अवार्ड नहीं दिया जाएगा ना। दूसरे भी भाषाओं के लोग है, और भी लोग है जिन्होंने भारतीय थिएटर को जिंदा रखा है, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतना ही स्वाभिमान पूर्वक है। तो हमें ये काम करना चाहिए, हमें 2 अवार्ड स्टार्ट करने चाहिए, नहीं तो बूढ़ा होने तक, जब तक उसको 2 आदमी उठा के पकड़ के ले जाते तब उसके बाद अवार्ड देके उसका इंस्पिरेशन क्या है
1: जी।
0: तो हमने एक सुझाव दिया था कि भाई ऐसे 2 अवार्ड, एक 50 साल के ऊपर जो रंगकर्मी ने आउटस्टैंडिंग काम किया है एनएसडी के एल्यूमिनाई ने, उसको एक अवार्ड दिया जाए, और 50 के नीचे जो भी नया हो 20-25 साल से लेके, उस रेंज में एक अवार्ड दिया जाए, ताकि एनएसडी जब एल्यूमिनाई

0: को अवार्ड देगी तो वो भी राष्ट्रीय पुरस्कार है
1: जी।
0: तो हम एनएसडी के एलिमिनाई को ही इंस्पायर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर करते रहें, काम करते रहें। तो फिर वो सोसाइटी ने मंजूर कर लिया और एक युवा जो आवास पुरस्कार था उसको मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार के हैसियत से उसका नाम दिया, और जो दूसरा था जो सीनियर को मिल रहा है वो बीवी कारण स्मृति पुरस्कार
1: जी।
0: और हम भूल गए वो सोसाइटी में, फिर उन्होंने कोई कमेटी वगैरह बिठा दी और पहला ही जो पुरस्कार डिक्लेयर किया कि जो सीनियर कैटेगरी में पुरस्कार जो दिया गया बीवी कारण पुरस्कार वो रतन थियाम जी को दिया गया,
1: आपके और गुरु।
0: हाँ, हमारे गुरु मतलब
1: जी।
0: और दूसरा जो पुरस्कार युवा रंगकर्मी का पुरस्कार तो वो अमन केंद्रे को दिया गया।
1: क्या बात है,
0: तब तक के लिए योगदान के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहा और जब मैं एनएसडी छोड़ने के बाद, मतलब मेरा टर्म खत्म होने के बाद, 2-3 साल वो अवार्ड दे नहीं पाए थे कई कारणों की वजह से, उसके बाद 2-4 साल नहीं दे पाए थे, तो फिर हमारे बाद के डायरेक्टर ने वो सारे पुरस्कार की घोषणाएं की समिति गठित करके, तो उसमें से जो दूसरा पुरस्कार जो मिलता है
1: सीनियर वाला
0: वो मैं पहला एल्यूमिनाई हूँ कि दोनों भी पुरस्कार, पहला तो स्मृति मिला ही था मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार, और ये बीवी कारण स्मृति पुरस्कार भी मुझे दिया गया। एंड ये भी एक रिकॉर्ड हो गया कि भाई ये दोनों पुरस्कार पाने वाला पहला एल्यूमिनाई ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वामन केंद्र है।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: लेकिन एक रिकॉर्ड और भी तो है कि वहीं पढ़ के वहीं के डायरेक्टर भी बने
1: जी,
0: और एक तूफानी कार्यकाल आपने किया जिसमें बहुत वाइब्रेंट काम वहां
1: हुआ। यस, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पहले भी कई सारे, मतलब जब विवेकानंद भी वहीं पढ़े थे वो डायरेक्टर हुए थे, ही वॉज फर्स्ट एग्जाम्पल
0: जी।
1: उसके बाद बी एम शाह तो एनएसडी में नहीं पढ़े थे, लेकिन रतन थियाम हो गए।

0: पर उन्होंने अपना डायरेक्टर का कार्यकाल पूरा नहीं किया, पर हुए वो भी मोहन महर्षि हुए, पर उनके कार्यकाल छोटे छोटे रहे। मोहन महर्षि 2 साल के लिए रहे, उसके बाद कीर्ति जैन रही, उसके बाद अंकुर जी रहे
1: जी,
0: तो ये सारे जो थे वो वहीं पड़े और वहीं डायरेक्टर हो गए। पर महाराष्ट्र का ये पहला रंगकर्मी था जिसको सम्मान पूर्वक वहां पर विद्यार्थी के हैसियत से नहीं पर बाहर के कंट्रीब्यूशन के हैसियत से आमंत्रित किया गया एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो वहां पढ़ा था और उसके बाद डायरेक्टर बना, कि महाराष्ट्र के इतिहास में ये तो दर्ज हो ही जाएगा। पर वहां के इतिहास में भी जो बहुत इम्पोर्टेंट डायरेक्टर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया उसमें से थोड़ा बहुत नाम तो ले ही लेंगे लोग, ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए भी वो कार्यकाल वाइब्रेंट रहा ऐसा लोग अब कह रहे हैं। तब तो क्या होता है कि कोई भी कार्यकाल का महत्व योगदान रजिस्टर होने के लिए बीच में काल जाना चाहिए होता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। तो अब लोग कह रहे हैं कि दैट वाज वन ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वो इतना ही था कि मैं बहुत ईमानदारी से काम करने गया था, जितना संभव है 24 घंटे से 36 घंटा कैसे हो सकता है ये कोशिश करके। मुझे लगता है कि वहां की खूबसूरती, मतलब कैंपस की खूबसूरती, कैंपस का आर्टिस्टिक होना, एकेडमिक जो हमारी गतिविधियां हैं उसको पुख्ता करना, जितनी भी विद्यार्थियों की समस्याएं हैं उसको पहले सुनना, क्योंकि अल्टीमेटली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बाकी चीजों के लिए नहीं, पहले विद्यार्थियों के लिए बनी हुई है
1: जी,
0: वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसमें क्या क्या मैं था तब उस जमाने में, कौन सा माहौल था, फिर क्या खामियां थी, क्योंकि मैं यहां मुंबई विश्वविद्यालय में 10 साल एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स खड़ा कर चुका था, तो यहां क्या प्लस पॉइंट्स है, वो सारे उसमें ढालते ढालते ढालते ढालते एक बहुत स्ट्रांग एकेडमिक स्ट्रेंथ वाले विद्यार्थी पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को एक्टिंग में काम मिले, जो एक्टर्स है डायरेक्शन में, डायरेक्टर को स्पेशलाइजेशन 3 कर दिए, 2 ही थे, एक एक्टिंग था और डिजाइन एंड स्टेज टेक्निक्स था, तो इसमें से डायरेक्शन हटाता था वो डिजाइनर को ही डायरेक्ट करने के लिए बोल देते थे। तो मैंने कहा ये उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है ना, डायरेक्टर एक सेपरेट टेम्परामेंट है, वो अलग स्वभाव है, डिजाइनर एक अलग स्वभाव है, एक्टर एक अलग स्वभाव है। तो सिलेक्शन से ही फिर हमने वो सारा माहौल बदलने की कोशिश की और तीनों स्पेशलाइजेशन वापस शुरुआत करके, तो एक ही साथ एक बैच के साथ दो दो नाटक करने से एक्टर को काम मिलना शुरू हो गया, और जो एक्टर भी और डायरेक्टर भी, तो दोनों को भी ये कॉन्फिडेंस मिलना, और डिजाइनर कॉमन होते थे, उनको तो दो दो प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिलता था, फिर उनको अपना डिप्लोमा प्रोडक्शन तो करना ही करना है। तो इस तरीके से मुझे लगा कि एकेडमिक माहौल बहुत स्ट्रांग बन गया, फैकल्टी जितनी संभवतः देश की और दुनिया की लाने की कोशिश की गई, तो ये सारा है। उसके साथ साथ उसका विस्तार किया, जो लोग कहते थे कि वो नेशनल नहीं बचा है, उसका थोड़ा सा स्वभाव दिल्ली के आसपास का बना है, तो हमने कहा ऐसा नहीं है, हम उसको डिसेंट्रलाइज कर लेते हैं, मतलब एकेडमिक एक्टिविटी तो रहेगी लेकिन उसका विस्तार हो। मतलब मेरे दिमाग में ये था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा केवल एल्यूमिनाई को ये ना लगे कि ये हमारी संस्था है, पर जो भी थिएटर कर रहा है, वो चाहे एमेटर थिएटर कर रहा है, चाहे प्रोफेशनल कर रहा है, चाहे पैरेलल कर रहा है, चाहे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चाहे मूवमेंट की हैसियत से थिएटर कर रहा है, चाहे चिल्ड्रन थिएटर कर रहा है, कोई भी किस्म का थिएटर कर रहा है, फार्मर का कर रहा है, कामगारों का कर रहा है, वो हर किसी को कोने में खड़े हुए किसी खेत में थिएटर करने वाले आदमी को ये लगना चाहिए कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेरी है,
1: वाह,
0: और मैं वहां जा सकता हूं, या वो मुझ तक पहुंच सकती है और मुझे लाभ दिला सकती है, वो ट्रेनिंग के लेवल पर हो, फेस्टिवल के लेवल पर हो। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शंस इन फेस्टिवल्स यहां से हो, क्वालिटी इज द ओनली क्राइटेरिया।
1: यस,
0: मैं हमेशा ये कहता था, भारत रंग महोत्सव हो या कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे जश्ने बचपन हो, बाल संग हो, कोई भी हो, या हमारे आदि क्या कहते हैं ये क्लासिकल थिएटर का फेस्टिवल हमने शुरू किया, नॉर्थ ईस्ट में अलग फेस्टिवल शुरू किए, इस सब में एक ही था, क्वालिटी इज इन सेंटर। मैं ये कहता था भारंगम में कि अगर कल को मेरे पिताजी का नाटक आता है और यहाँ कंसीडर करने के लायक नहीं है तो उस डीवीडी को फेंक दो और तोड़ दो, कोई पर्सनैलिटी नहीं, कोई मेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं, कोई किसी का नहीं है, जो थिएटर क्वालिटी का काम करता है वो हम सबका है।
1: क्या बात
0: है? और उसको ही सेंटर में रख के कोशिश यही की गई कि

0: पांच साल उस एनएसडी का जो क्वालिटेटिव माहौल है उसको भी एनहांस करने की कोशिश की गई। बहुत विनम्रता के साथ ये सब कह रहा हूँ। दूसरा, मुझे लगा कि जो विस्तार होना चाहिए था उसका, जैसे बंगलोर में हमारा एक सेंटर था पर वो रिसोर्स सेंटर बन के रह गया, तो हमने कहा ये तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो उसको कन्वर्ट किया एक साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम में और वहां बच्चों को स्कॉलरशिप देके अब वहां 20 बच्चे हर साल पढ़ते हैं। जो एक सेंटर नया क्लासिकल थिएटर में, जो हमारी धारणा थी कि एक संस्कृत शैली का थिएटर जो करना चाहता है, सीखना चाहता है, कहीं और से थिएटर सीख के आया और उसको स्पेशलाइजेशन करना है, उसके लिए मौका ढूंढना चाहिए, रखना चाहिए। इसलिए वाराणसी में एक साल का कोर्स शुरू किया, सेंटर शुरू किया, और वो क्लासिकल इंडियन ड्रामा सीखने के लिए।
1: जी,
0: जो सिक्किम का सेंटर था वो एक साल का था, हमने कहा इसको दो साल करिए, फिर उसको दो साल करने का सारा जो कुछ था उसको करने की कोशिश की। एक त्रिपुरा में था, वो केवल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए था, तो हमने कहा नहीं है, वो केवल टीचर्स ट्रेनिंग जो थिएटर एजुकेशन में निर्माण करना इतना ही उसका काम नहीं है, आर्टिस्ट निर्माण करना भी उसका काम होना चाहिए, थिएटर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, प्रैक्टिशनर भी निर्माण करे और हम टीचर भी निर्माण करे। इसी के लिए वो सेंटर, और दोनों सेंटर नॉर्थ ईस्ट कन्फाइंड हो कि वहां के लोगों के लिए बनाएं, तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उस 7 और 8 स्टेट को होना चाहिए। तो इस तरीके से मुंबई सेंटर का जो लेआउट था वो पूरा सैंक्शन करके रखा था। जम्मू कश्मीर में भी अभी अभी सेंटर खुल गया मेरे आने के बाद, तो ये सारी बहुत अच्छी चीजें वहां करने का मौका मिला। फिर थिएटर ओलंपिक्स, एक सबसे बड़ी जो मतलब भारत रंग महोत्सव को तो हमने ये तो किया ही किया, पर एक दिन मुझे अचानक पता चला कि थिएटर ओलंपिक्स नाम की कोई एक चीज होती है। तो जब मैंने उसका इतिहास ढूंढने की कोशिश की तो जो पहले ओलंपिक होता था जो स्पोर्ट्स का है, उसमें स्पोर्ट्स भी होता था, उसमें थिएटर भी होता था, म्यूजिक भी होता था, डांस भी होता था, विजुअल आर्ट्स भी होती थी, ये सब मिलके ओलंपिक होता था।
1: ओके,
0: पर आगे चलकर स्पोर्ट्स वाले ने उस प्लेटफॉर्म को हाईजैक किया और ये सब पीछे छूट गए। फिर थिएटर के कुछ लोग इकट्ठा आ गए और उन्होंने कहा कि यार हम इसका हिस्सा थे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे हाथ से गया। तो कुछ विद्वानों ने, थिएटर के रंगकर्मियों ने ये तय किया कि हम अपना थिएटर ओलंपिक्स क्यों ना शुरू करें, और फिर वो शुरू किया। पहला वो ग्रीस में हुआ और ये मुझे पता चला फिर बाद में तुर्की में हो गया, फिर कहीं जापान में हो गया, चाइना में हो गया, कनाडा में, यहाँ वहां हो गया, और 8वां होना है ये मुझे पता चला। तो मैंने अपने सोसाइटी से कहा कि भाई ये ओलंपिक अगर हमें मिलता है तो हमको लेना चाहिए। फिर हमारी मिनिस्ट्री है जो केंद्र सरकार की, उनको कहा तो उनकी परमिशन ले ली और 8वां थिएटर ओलंपिक्स भारत में हो, इसके लिए हमने कमिटी से रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा हमें आके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, तो हमने बुलाया उनको, आइए, न्योता दिया, वो आए, सब देख लिया, दिल्ली देखा, मुंबई देखा, ये 2-4 जगह देखा, और उन्होंने कहा नहीं है, ओलंपिक होने लायक तो यहाँ है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और एनएसडी कैन हैंडल इट, क्योंकि इंटरनेशनल फेस्टिवल तो हैंडल करती ही है। तो फिर उन्होंने वो हमको मौका दिया और सौभाग्य की बात है कि 51 दिन का तो 8वां थिएटर ओलंपिक्स हो गया, जो 17 राज्यों में हुआ, जम्मू कश्मीर से लेके त्रिवेंद्रम तक, और इधर मणिपुर और गुवाहाटी से लेके आसाम से लेके इधर अहमदाबाद तक, मुंबई, बंगलोर, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, ये सारे उसके सेंटर थे। 17 सेंटर में 51 दिन में हमने 450 नाटक, 32 देशों का पार्टिसिपेशन, ये मेजर नाटक जो मेन थिएटर में किए, उसी को यूथ से जोड़ने के लिए हमने 300 कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के 300 नाटक सेलेक्ट करके, मतलब उसमें भी 1100 नाटक आए थे, एक कमेटी ने 300 नाटक सेलेक्ट किए, वो 300 शो और फोक, ट्राइबल और स्ट्रीट प्लेयर्स जो है हमारे संस्कृति के आधार स्तंभ, वो कव्वाली से लेके सारा कुछ, तो उनके 600-650 शो,
1: तो ये तो कितने,
0: ये लगभग 1500 शो, 1500 शो हमने उसमें 51 दिन में किए, और जिसमें 25-26 हजार आर्टिस्ट इन्वॉल्व हो गए देश के और दुनिया के।
1: तो बहुत भव्य,
0: बहुत बहुत हो गया। ये ऐसा माना गया कि ये भारत के इतिहास का नहीं, रंग जगत के इतिहास का नहीं, नाटक जगत के इतिहास का नहीं है, दुनिया के इतिहास का।

0: नाटक जगत के इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट किसी ने किया हो तो भारत देश ने किया, और वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने किया।
1: वाह वाह,
0: ये मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट हुआ। और एक बहुत अच्छी बात है, जितने नाटक वाले थे हमने 125 डायरेक्टर को इनवाइट किया, जिन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया जिस किसी भी भाषा में, उनको हमने हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक इनवाइट किया कि भाई आप अपना बेस्ट प्रोडक्शन लेके इसमें शामिल हो जाइए। अब 125 तो नहीं हो पाए, लेकिन 105 इनवाइटेड डायरेक्टर ने उसमें नाटक किए।
1: वाह,
0: कॉम्पिटेटिव फेस्टिवल में हमने कहा था कि उसमें 1200 नाटक आ गए, उसमें से 250 नाटक चुन लिए गए, और विदेशी नाटक 32 देशों के नाटक आ गए। तो ऐसा मिलाकर ये दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा इवेंट हो चुका है, और इतना बड़ा क्वालिटेटिव थिएटर फेस्टिवल मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ। उसके बाद तो एक्टिविटी चलती रहती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए, और सौभाग्य से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए, और उसका मैं डायरेक्टर था, ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: सिनेमा के आकर्षण से आप कैसे बचे रहे अपने पूरे जीवन काल में?
1: नहीं, मुझे मालूम था कि मुझे पहले अपनी स्पेस नाटक में पैदा करना जरूरी है, क्योंकि मेरी जगह है। मैं कहीं भी जाऊं, भूला भटका हो जाऊं, पर गिरने के बाद मुझे अपनी एक जगह चाहिए, वो पुख्ता जगह तैयार होना जरूरी था। पर वो क्या हो गया कि मैं एकेडमिक से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया पहले से ही।
0: जी जी,
1: एनएसडी हो गया, रिसर्च हो गया, आके एनसीपीए में 10 साल, फिर वही एसोसिएट रह गया, रिश हो गया, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी में 10 साल हो गया। जब भी मैंने थिएटर से फिल्म की तरफ जाने की कोशिश की, रंग देवता ने किसी न किसी बहाने मुझे वापस खींच लिया।
0: वहां नहीं जाना है?
1: वहां जाने नहीं दिया, मतलब ऐसी कोई परेशानियां या उस तरीके की अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी की कि आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं और ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करो। मतलब मैं जाने मन नाटक किया और रणांगण किया, दो बहुत मेजर प्लेस थे मेरे हिसाब से, एक ही साल के आसपास किए मैंने। और ये तय किया था कि आप 5 साल में नाटक नहीं करूंगा, तब भी ये नाटक चलते रहेंगे और नाम गूंजता रहेगा, तो अब मैं फिल्म करूंगा। तो कोई एक प्रोड्यूसर उस समय मुझसे बहुत बड़ा मेगा इवेंट करना चाह रहे थे फिल्म में, और मेगा कंटेंट पे वो बजट लेके बैठे हुए थे। तो उसी दरमियान डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर, जो वाइस चांसलर थे मुंबई विश्वविद्यालय के, बाद में प्लानिंग कमीशन के मेंबर हो गए, फिर राज्यसभा के मेंबर हो गए, तो उन्होंने एक कमेटी स्थापन की। उस कमेटी में मुझे भी लिया गया और बोले कि 35 साल से मैंने देखा हिस्ट्री, मुंबई विश्वविद्यालय में नाटक का विभाग हो, इसके लिए इतनी कमेटियां हो गई, इतना हो गया,

0: पर आज तक वो हो नहीं पाया। उसमें जब्बार पटेल थे, दामू केंकरे थे, मैं था, उसके बाद रघुवीर तड़ाशीलकर थे, जयंत पवार, ऐसे सात आठ लोग थे। उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई कमेटी बिमिटी, आपकी कमेटी है अंतिम है, अब आपको चार महीने के अंदर मुझे ये विभाग शुरू करना।
1: अरे गजब,
0: आप जो जो चाहिए बताइए मुझे क्या चाहिए। तो पहले उन्होंने कहा एक सिलेबस दे दो, तो हमने कहीं यहां वहां से कटिंग पेस्टिंग करके एक सिलेबस दे दिया उनको, जो उन्होंने एकेडमी काउंसिल में पारित कर लिया, मैनेजमेंट काउंसिल में पारित कर लिया कि हमको ये डिपार्टमेंट खोलना है। चौथे महीने में उन्होंने डिपार्टमेंट खोल दिया।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: वो चार महीना मेरे पीछे पड़े रहे कि तुमको इसका हेड होना है, तो मैंने मना कि मुझे तो जाना है, मैं तो सिनेमा करने वाला हूँ।
1: कोई मेगा प्रोजेक्ट है?
0: हाँ, मेगा प्रोजेक्ट है। और फिर उन्होंने जब्बार पटेल जी को, दामू केंकरे जी को, ये सारे हमारे दोस्तों को बोला कि नहीं इसको राजी करो। तो फिर वो होते होते फिर सुशील कुमार शिंदे जी तक बात पहुंच गई। और एक दिन उनका भी फोन आ गया कि वैसे भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर अच्छा नहीं है मुंबई में, तो इसीलिए अगर वो सही आदमी के हाथ में नहीं जाएगा तो फिर ये आप लोग रोते रहोगे। तो वो जो कह रहे हैं मुनगेकर, उसकी बात मानो। और मैं आपको महाराष्ट्र की जनता की ओर से बोल रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि एक दो तीन साल दे दो, दो दिन तीन तीन घंटा चार घंटा दे दो, बाकी अपना काम करते रहो। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है सर, एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है तो आप, मैं आपको बता देता हूँ, 10 साल रात दिन काम करेंगे तभी खड़ा होगा। बोले जो भी है कर लो और इसको फाउंडेशन करके फिर बाद में छोड़ के जाओ। तो अब इतने सारे रंगकर्मी भी हैं, राजनेता भी हैं और मित्र भी हैं, ये सारे मेरे नाटक देखने वाले भी थे, तो सभी की ओर से, चारों ओर से वो लगा कि आपको करना चाहिए। फिर हमने कहा कि चलो यार इसको 2 साल के बाद प्रोजेक्ट को करते हैं, वह 3 साल के बाद फिल्म को, तो वो स्वीकारना पड़ा। और एक बार वो स्वीकारने के बाद 2003 में मैंने उसको स्वीकारा, 13 कब आया मुझे समझ में नहीं आया।
1: जो दो तीन साल
0: सोचा था। और रात दिन मैं सुबह 7:45 बजे पहुंचता था, रात को 12 बजे घर पहुंचता था।
1: अरे बाप रे।
0: पर चूंकि वो उतनी इन्वॉल्वमेंट से किया, इसलिए एक नेशनल लेवल का 10 साल में एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, और जहां पर लोग पढ़ने के लिए ज्यादा पसंद करते थे बजाय के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाए। तो जो सारा का सारा फ्लो था वो वहां से मुंबई की तरफ मुड़ गया, क्योंकि अल्टीमेटली मुंबई में ही जाना है सबको, मतलब ज्यादातर लोगों को, अपवाद तो बहुत है। तो फिर 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी मिल रही है।
1: जी जी।
0: तो ये भी जिसको एकेडमिक्स में जाना है उसके लिए ये भी और एक शॉर्टकट हो गया। और वो सारे लोगों को हम बुलाते थे जो बाहर जाके, जिनके साथ इनको काम करना है, चाहे वो फिरोज अब्बास खान है, चाहे दिनेश ठाकुर है, चाहे रमेश तलवार है, एमएस सत्यू साहब है, जब्बार पटेल है, डॉक्टर लागू है, नीलू फुले जी हैं, विजया मेहता जी है, जितने भी मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, और परेश रावल जी है, नसीरुद्दीन शाह है, मैं ऐसा कोई छोड़ा ही नहीं हमने जिनको बुलाया नहीं। तो एक तरीके का वो अड्डा बनते बनते वो एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, वो भी एक अपने आप में एक यूनिक, यूनिवर्सिटी के पूरे प्रेशर में, सेटअप में वो खड़ा करना भी अपने आप में एक चैलेंज था, बट आई एंजॉयड दैट आल्सो। और एक बहुत अच्छे, एक से एक बेहतर प्रोडक्शन भी हो गए। ये मध्यम व्यायोग तो उसी के लिए किया था, फिर ईडीपस किया 2 मंजिला सेट लगा के। मेरे बाद और भी डायरेक्टर्स ने भी काम किया, विजय केंकरे ने किया, चंद्रकांत कुलकर्णी ने आके काम किया, पुरुषोत्तम बेर्डे ने किया, रंजीत कपूर ने आके काम किया, अंकुर जी ने आके काम किया, इतने सारे। और ये पहला विभाग है पूरे देश में यूनिवर्सिटी के मर्यादा में कि पहले साल हमने अपना नेशनल फेस्टिवल शुरू किया।
1: वाह वाह वाह।
0: राष्ट्रीय वसंत नाट्य महोत्सव
1: जी,
0: इसमें ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है कि जिसको हमने इनवाइट नहीं किया, पूरे हर एक, रतन थियाम मणिपुर से 2 बार आ गए, बंसी कौल आ गए, उसके बाद रैना साहब आ गए, उसके बाद रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आ गए, मतलब कोई भी, साउथ का बी जयश्री आ गई, अहमदाबाद से फलाना आ गया, सौम्या जोशी आ गए, इतने सारे पुराने भी डायरेक्टर्स और नए भी डायरेक्टर्स, सबको वहां लाया। ऐसे प्रोडक्शन हम चुन चुन के लाते थे कि जो अदरवाइज मुंबई में देखने सुनने को मिलेंगे नहीं, तो वो लंबी लाइन में खड़े होके लोग अंदर जाते थे और वो माहौल भी देखा हमने। और सारा का सारा विद्यार्थी ऑर्गेनाइज करते थे, हम सिर्फ उसके पीछे खड़े रहते थे।
1: वाह वाह।
0: कि अंत में अगले जनरेशन के रिस्पॉन्सिबल लोग बनाने का काम, वो यज्ञ जैसा हो रहा था। तो वो भी एक अपने आप में मुझे लगता है कि मिसाल है, जो माहौल दिल्ली में मैं ले गया वो यहीं बनाया हुआ।

0: कि
1: जी
0: क्या करने से बच्चे के जीवन में परिवर्तन होता है, वो सारा का सारा वहां तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें एड ऑन क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कम पड़ा था, क्या ज्यादा था। तो मुझे लगता है कि वो सारा जो एकेडमिक्स है उससे मेरी कहीं दोस्ती नहीं टूटी, जो प्रैक्टिसेस है उसमें मेरी कोई दोस्ती नहीं टूटी, तीसरा है मेरा रिसर्च का स्वभाव अभी तक वैसा ही है, चौथा है दुनिया भर का जो हो रहा है उसका कॉग्निजेंस रखना कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी एक अपने आप में दिलचस्प बातें थी। मुंबई में जो जो भी आता था, जो किसी भी देश से आए, वो एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में आए बिना जा नहीं सकता था।
1: जी जी,
0: ऐसा कुछ हमने, चाहे ब्रिटिश काउंसिल हो, चाहे अमेरिकन सेंटर हो, चाहे जर्मन सेंटर हो, रशियन सेंटर हो, छोटे से छोटे देश का कोई भी रंगकर्मी आता था वो मुझे पता चलता था, क्योंकि वो नेटवर्क था, दोस्ती थी इन लोगों से, जो दिल्ली में भी बहुत काम आया मुझे बाद में आगे चल के। तो इसकी वजह से ये भी खड़ा हो गया, और अभी तक मैं जब तक था, मुझे लगता है 8 बार राष्ट्रीय वसंत नाट्य महोत्सव हुआ, 8 या 9 बार
1: जी।
0: तो उसमें भी हमारे बच्चों को दुनिया भर का बेहतर नाटक देखने को मिलता था। कोई नॉर्वे से आ रहा है, एक कोई आदिवासी ग्रुप थिएटर लेके, उसका परफॉर्मेंस हम वहाँ करते थे।
1: वाह वाह,
0: मतलब ऐसा नहीं है, कोई से भी कोई भी आए और हमको पता चले कि हम उसको हाथ जोड़ के पकड़ के लाते थे, और जितना भी संभव है हमारी अपनी इसमें सुविधा देना उतना करते थे, क्योंकि एक क्लोज थिएटर कुसुमाग्रज जो भाषा सभागृह है वो हमारे हाथ में था, और एक ओपन एयर थिएटर हमने हमारे लिए हमारे इंजीनियर से कंस्ट्रक्ट करवा लिया था, उससे बेहतर थिएटर तो आज इस देश में कहीं नहीं है। ओपन एयर थिएटर में जाइए, माहौल है कि यहाँ बैठे बैठे आप करियों का आस्वाद ले सकते हो।
1: सही है, सही है। तो सिनेमा के जो आपके सपने हैं, आपकी धारा को,
0: तो इसीलिए सिनेमा, मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि मैं सिनेमा नहीं करूंगा, मुझे लगा था कि यहाँ पर एक स्पेस बननी चाहिए, आपकी जगह बननी चाहिए, और ये मेरा स्वभाव नहीं कि इसको छोड़ के उसको पकड़ो और उसको पकड़ के उसको ताड़ो। मुझे लगा कि ये जहाँ काम करना है, जहाँ आनंद आ रहा है, और हर बार आप अपनी डिस्कवरी कुछ कर रहे हो। मतलब अभी तक मैं कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं किया कि मैं अपने आप को रिपीट कर पाऊँ, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी कुछ नया नाटक करना चाहिए।
1: जी जी,
0: सिनेमा का भी सपने आते हैं कि भाई मुझे ऐसा सिनेमा करना है कि जैसे पहले नाटक ने देश को हिला दिया, वैसे मैं कम से कम पहले फिल्म में दुनिया को हिला दूं। ऐसा कोई कंटेंट मैं ढूंढ रहा हूँ, ऐसा कोई कहने का तरीका ढूंढ रहा हूँ, ताकि वो माध्यम में जाने के बाद लोगों को ये ना बुलाए मेरा कुछ देखो।
1: जी जी जी,
0: वो अपने आप इतना बोलना चाहिए कि यार आई शुड गो एंड सी दैट फिल्म।
1: तब तक इस धारा को ऋत्विक आगे बढ़ा रहे हैं।
0: ऋत्विक के 2 या 3 सिनेमा आ गए हैं, और तीसरा ही पिछले हफ्ते में उसके सिनेमा का फिल्म फेस्टिवल में एक स्क्रीनिंग हुआ है।
1: जी जी,
0: उसके पहले उसका ड्राई डे एक सिनेमा रिलीज हो गया है। अभी रिसेंटली एक बहुत इम्पोर्टेंट सिनेमा है जो उतना अंडरलाइन होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया, पर आगे चलकर होगा, सरगम नाम का सिनेमा है, और बहुत यूनिक स्टोरी पे बनाया है, और उसका खासियत यह है कि गिरीश कारनाड जी का आखिरी सिनेमा है जिसमें गिरीश कारनाड जी ने स्वतः काम किया है।
1: जी,
0: और वो मराठी सिनेमा है, और वो बहुत अच्छा रोल किया है गिरीश कारनाड जी ने, और ऋत्विक और गिरीश कारनाड जी आमने सामने हैं।
1: वाह वाह वाह,
0: ऋत्विक प्रमुख भूमिका में, नायक की भूमिका में है, और वो ऐसा लगता है खलनायक है लेकिन वो है ही नहीं।
1: जी,
0: तो ये सारा जो मुझे लग रहा है कि ये जो धरोहर है या ये जो थ्रेड्स है या जर्नी है वो तो आगे चलती रहेगी। ऋत्विक अपने तरीके से वो थिएटर भी कर रहा है और सिनेमा में भी काम कर रहा है, और भी कुछ वो करना चाह रहा है जो कभी बोलता है कभी नहीं बोलता है।
1: अच्छा क्या बात तो, है,
0: ये तो चलते रहेगा सिलसिला, पर सिनेमा भी करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आई हैव रेजिस्टेंस अबाउट सिनेमा, आई एम वेरी हैप्पी विथ सम एक्सप्रेशंस। सिनेमा में भी लोग बहुत यूनिक काम कर रहे हैं, और भारतीय सिनेमा में भी कर रहे हैं
1: जी,
0: पर वो मेन स्ट्रीम में नहीं है।
1: जी,
0: मेन स्ट्रीम जो हमारा व्यावसायिक सिनेमा है उसमें बहुत रेयरली आपको लगता है कि यार ये ठीक है।
1: जी,
0: इसलिए मैं सेंसर बोर्ड का बोर्ड मेंबर भी हूँ, तो वो इसीलिए हूँ कि मैं सिनेमा देखते रहता हूँ
1: हर तरह की सिनेमा,
0: हर तरह का सिनेमा देख।
1: जी, वामन केंद्रीय जी, आपकी तमाम अगली अभिव्यक्तियों का हमें इंतजार रहेगा, और इस लंबी बातचीत में बहुत आनंद आया। सबसे अच्छी बातचीत वो होती है जिनमें अगली बार की बातचीत की गुंजाइश बनी रहे।
0: जी जी जी,
1: मुझे लगता है इस बातचीत को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूनुस जी और विविध भारती का मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इतना सारा गपशप करवाने के लिए।
1: बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू, धन्यवाद।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का चौथा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: उजाले।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों रूपरेखा तैयार जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान किया। गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
1: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया है। 26 से 29 को हमने मिशन मोड अवधि के रूप में चिन्हित किया है, समय सीमाएं तय की है। 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: श्री शाह ने बताया कि वर्ष 2014 से 2024 के बीच 1,19,00,000 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए। इनकी कीमत करीब 1,89,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में सत्यनिकेतन में बहुमंजिला पीजी आवास की इमारत ढहने की घटना के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलंकर प्रदान करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड पंजाब सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी को बंबई उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने कल उनकी नियुक्ति को

0: आदौ मुख्याः वार्ताः। ऊनत्रिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षं यावत् भारतं मादकद्रव्यमुक्तं विधातुम् एका त्रिवार्षिकी मार्गदर्शिका प्रस्तुता। आगामि त्रिवर्षेषु षट् अन्ताराष्ट्रिय तथा अन्ताराज्यीय मादक सञ्जालानि खण्डयितुं केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन निर्धारितं लक्ष्यम्। भारतस्य आर्थिक शक्तिः नीति गतिशीलता च देशं विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्रति नयतः। भारतीय प्रतिष्ठानानि जागतिक स्तरे नेतृत्वं कुर्युः इति प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः ओजस्वयुतम् आह्वानम्। संयुक्त राष्ट्र संसदि समान क्षेत्रफल मानचित्र प्रस्तावस्य भारतेन कृतं समर्थनम्। संप्रभुता प्रादेशिक अखण्डतयोः अक्षुण्णतां रेखांकयत् भारतेन प्रोक्तं यत् जम्मू कश्मीर लद्दाख समेत्य समस्त क्षेत्रस्य प्रदर्शनं केवलम् आधिकारिक मानचित्रानुगुणम् एव स्वीकार्यम्। मध्यप्रदेशस्य सागर मण्डले संदिग्ध विषाक्त मद्यपानेन 10 जनाः मृत्युमुपगताः, 35 जनाः चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः, कतिपय संदिग्धाः आरक्षिदलेन गृहीताः। अपि च चीनदेशस्य शेन्झेन नगरे आयोजितायां बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां चाइना मास्टर्स पुरुष युगल प्रतियोगितायाः चषकं भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी युगलेन विजितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गोवाराज्ये वार्ताहर सम्मेलने ऊनत्रिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षं यावत् भारतं मादकद्रव्यमुक्तं कर्तुं रूपरेखां प्राकटयत्। तेन मादकपदार्थविरोधी त्रिवार्षिक राष्ट्रिय अभियानस्य आह्वानं कृतम्। गृहमन्त्रिणा संसूचितं यत् प्रशासनेन शत मादक सञ्जालानि खण्डयितुं, शत अपराधिनः भारतम् आनेतुं तथा शत अवैधिक प्रयोगशालाः विनष्टं कर्तुं उच्चलक्ष्यं विनिर्धारितम्। नवदेहल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स महाविद्यालयस्य शत वर्षे सम्पूर्णे सति आयोजिते शताब्दी समारोहे प्रधानमन्त्री मोदी मुख्य अभ्यागतः आसीत्। तेन जेन्जी युवा उद्यमिनः प्रोत्साहयितुं उच्चलक्ष्यधारणस्य मन्त्रो दत्तः। तेन प्रोदीरितं यत् भारतीय मेधा जागतिक व्यापार जगत् नूतनां दिशं दर्शयति। एआई प्रौद्योगिक्याः उपयोगेन च देशः आर्थिक समृद्धिं प्राप्नोति।
1: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करे।
0: आर्थिक दृढ़ताम प्रतिपादयन प्रधानमंत्री अवोचत यत् पश्चिम एशिया संकटावधौ अपि भारतेन 7.8% यावत् अभूतपूर्व संवृद्धि मानमर्जितम्। अनेन भारतस्य आन्तरिक शक्तेः परिचयः लभ्यते। तेन प्रख्यापितं यत् वैश्विक संकटेषु भारतस्य दृढ नीति संचालनमद्य जागतिक स्तरे श्लाघनीयं वर्तते।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: आत्मनिर्भर भारतस्य दिशि मेक इन इंडिया अभियानम् अभूतपूर्वम् परिवर्तनम् साधयतीति प्रधानमन्त्री अवोचत्। अनेनाभियानेन भारतम् अद्य प्रमुख निर्यातक राष्ट्रम् अभवत्। असौ न्यगादीत् यत् स्मार्टफोन क्षेत्रे 2.25 लक्ष कोटि रूप्यकाणां निर्यातं सम्प्राप्तम्। रक्षा उत्पादने च 2 लक्ष कोटि रूप्यकाणां नूतन कीर्तिमानं स्थापितम्। भारतस्य भौगोलिक अखण्डतां संप्रभुतां रेखांकयन् विदेश मन्त्रालयः संयुक्त

मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका।

0: का है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की दो टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं।
2: दो टीम में करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
3: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
3: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग विनिष्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping

0: marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है असम के गुवाहाटी में गीता नगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए
4: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
3: असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है
5: ध्यान दें आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक तो देर किस बात की आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी सीएससी केंद्र पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं
7: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने
3: ये आकाशवाणी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है देश व्यापार वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है डॉ यादव 3 दिन की दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका

0: रूपकों के अखिल भारतीय
1: रूपकों के
0: कार्यक्रम के
1: अखिल
0: अंतर्गत
1: भारतीय
0: सुनेंगे।
1: कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे रूपक राखी गढ़ी मिट्टी के नीचे सोया महानगर। आलेख है डॉक्टर अप्पू सहारण का, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार।
2: आज की यात्रा किसी सड़क या ट्रेन की नहीं, यह यात्रा है समय की रेखा पर पीछे लौटने की। हमारी आज की आधुनिक दुनिया से मिलकर हम पहुंच रहे हैं लगभग 7000 वर्ष पीछे। हरियाणा की हांसी जिले की उस पावन धरा के गर्भ में दबा है सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक विशाल सुनियोजित महानगर। पक्की ईंटों के मकान, चौड़ी सड़कें, वैज्ञानिक जल निकासी, कुएं, दस्तकार, व्यापारी और कृषि पर आधारित एक समृद्ध समाज, यही पहचान है राखी गढ़ी की।
3: हजारों वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में छिपा इतना बड़ा महानगर आखिर सामने कैसे आया? क्या यह किसी आकस्मिक संयोग का परिणाम था या निरंतर पुरातात्विक साधना का?
2: पुरातत्वविद व महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर रहे अमर सिंह ने कई वर्षों तक पढ़ाया है। वे समय समय पर छात्रों को राखी गढ़ी में हो रहे उत्खनन कार्यों को दिखाने के लिए ले जाते रहे। वे बताते हैं,
4: जहाँ तक राखी गढ़ी के प्रास्थल की खोज का प्रश्न है, हमारी जानकारी के अनुसार झज्जर गुरुकुल के संस्थापक व प्राचीन वस्तुओं के संग्रहकर्ता आचार्य भगवान देव, जिन्हें स्वामी ओमानंद सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1960 के दशक के प्रारंभ में राखी गढ़ी प्रास्थल का दौरा किया। इस दौरान उनको यहाँ से कुछ प्राचीन बर्तन तथा वस्तुएं मिली, लेकिन वह इन वस्तुओं के ऐतिहासिक महत्व को स्वयं नहीं समझ पाए। उन्होंने ये अवशेष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर सूरज भान को दिखाए। इसके पश्चात

0: डॉक्टर सूरज भान ने 1963 में राखी गढ़ी का दौरा किया और वहां से प्राप्त अवशेषों की पहचान करके आधिकारिक रूप से ये सिद्ध कर दिया कि ये अवशेष भारत की प्राचीन सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। उन्होंने राखी गढ़ी के महत्व को समझकर आसपास के क्षेत्र का व्यापक रूप से सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक ऐसे ही पुरास्थल प्रकाश में आई। राखी गढ़ी की खोज ने सिंधु सभ्यता के बारे में प्रचलित इस धारणा को ही बदल दिया कि ये सभ्यता केवल सिंधु घाटी क्षेत्र तक ही सीमित थी, बल्कि ये पुष्ट कर दिया कि वह भारत में सरस्वती नदी तथा इसके आसपास के विस्तृत क्षेत्र में भी ये फली फूली। इसीलिए सिंधु सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया गया है। अंततः 1997-98 के सत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने यहाँ निरंतर 3 सत्रों तक उत्खनन किया। उत्खननों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के सांस्कृतिक अवशेष मिले। 2011 से 16 के बीच पुणे के डेक्कन कॉलेज के तत्कालीन कुलपति एवं प्रसिद्ध पुरातत्ववेता डॉक्टर वसंत शिंदे के नेतृत्व में उत्खनन किए गए। टीला संख्या 7 से हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान भी मिला, जिसमें नर और मादा मानव कंकाल मिले। 2022-23 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक संजय मंजुल ने भी यहाँ पर उत्खनन कार्य किया। अभी भी 2025-26 के सत्र में यहाँ पर उत्खनन शाखा नोएडा 2 के मनोज सक्सेना के निर्देशन में कार्य जारी है।
1: सभ्यताएं हमेशा नदियों के आंचल में पनपती हैं। रावी के तट पर हड़प्पा का विस्तार हुआ और सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो का। वहीं राखीगढ़ी का सीधा संबंध था सरस्वती दृषद्वती के सूखे मैदानी क्षेत्र से, जो कभी अत्यधिक उपजाऊ था। राखीगढ़ी केवल एक शहर नहीं था, बल्कि इस पूरे नदी क्षेत्र का व्यापारिक और कृषि केंद्र था। यहाँ की समृद्ध खेती और जल प्रबंधन ही इस विशाल नगर के भरण पोषण का आधार था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट कहते हैं कि
2: दृषद्वती नदी सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी थी। ये नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती थी, जिसमें सरस्वती उत्तर की ओर तथा दृषद्वती दक्षिण की ओर बहती थी।
3: ये एक घग्गर की तरह एक सहायक नदी थी दृषद्वती, जो आपके शिवालिक निकल के और फिर आगे चल के ये करनाल और पानीपत के बीच से होते हुए और कई तीर्थ, महाभारत में बहुत तीर्थों का स्थान का धाम है, तो इस सफीदों यानी सप्त देवी और सर्व दमन के पास जाती थी, फिर पश्चिम को मुड़ जाती थी और इसके पास अश्विन वराह जीव और राम राय ये पवित्र तीर्थ स्थान थे और राम राय में इसके चार द्वार थे, उसमें राम राय था और राम राय के पास आपका राखी गढ़ी बसा हुआ है। और सरस्वती से मैंने एक संबंध बता दिया आपको और इसकी जो धारा है वो आज भी आसन वराह जीन राम राय आप होते हुए हांसी हिसार सिसवाल मातर श्याम घाघरा रावस्तर सोथी होते हुए ये सरस्वती से संगम करती है सूरतगढ़ के पास, सरस्वती से इस पर संबंध है।
1: ऋग्वेद की ऋचाओं में इन नदियों किनारे भरतवंशी राजाओं द्वारा यज्ञ करने का वर्णन मिलता है। रविंद्र सिंह बिष्ट मानते हैं कि सरस्वती के दक्षिण में तथा दृषद्वती के उत्तर में जो क्षेत्र है उसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है।
3: नदी के किनारे है, अब वो लोग तो प्राय हो गई है, लेकिन एक जमाने में वो शिवालिक से लेके जहाँ तक सरस्वती संगम होता था ये सूरतगढ़ के पास एक प्राचीन स्थान है रंग महल के पास इसका मेल होता था सरस्वती का, इसका इतना महत्व था। मैं आपको ऋग्वेद की बात बताता हूँ कि उसमें एक श्लोक आता है कि दृषद्वत्यम मानुष आपयायाम सरस्वत्याम रेव दग्नि विधि, इसका मतलब है कि दृषद्वती आपया और सरस्वती इतनी पवित्र नदियाँ थी कि इसके किनारे भरत वंश के राजकुमार देव स्वस्थ और देव वाक इन तीनों नदियों के किनारे यज्ञ किए। हो सकता है एक स्थान उसका राखीगढ़ी रहा।
1: राखीगढ़ी लगभग 350 से 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 9 टीलों का समूह है। यहाँ परिपक्व हड़प्पा काल के साथ साथ पूर्व हड़प्पा काल के साक्ष्य भी मिले हैं। ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, नालियां और अग्निवेदियां यह सिद्ध करती हैं कि यहाँ का समाज प्रशासनिक और नागरिक दृष्टि से अत्यंत परिपक्व था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी एवं वर्तमान

0: खनन करता मनोज सक्सेना ने बताया।
1: राखी गढ़ी ग्राम दो गांव राखी खास और राखी शाहपुर को मिलाकर बना है। राखी गढ़ी के आसपास 9 टीले हैं जिनका विस्तार लगभग 350 हेक्टेयर में फैला है, जो इसे सिंधु सभ्यता का अब तक का सबसे विशाल नगरीय केंद्र बनाता है। राखी गढ़ी ग्राम टीला संख्या 4 एवं 5 पर बसा है, तो यहाँ उत्खनन का कार्य संभव नहीं है, परंतु टीला संख्या 5 पर कुछ क्षेत्र में हमें कार्य करने की जगह मिली और जहाँ पर हम लोगों ने इस वर्ष के जो एक्सकेवेशन है उसमें हमने कुछ ट्रेंच वहाँ लगाए और हमें कुछ घरेलू संरचनाओं की कच्ची मिट्टी की ईंटों के से निर्मित है वो प्राप्त हुई है। टीला संख्या 1 से 9 तक के अध्ययन से हमें पूर्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा काल के निरंतर सांस्कृतिक विकास और अधिवास के अनुक्रम को दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ से उत्खनन में सुविकसित नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं, जिसमें सड़कों को समकोण पर काटना, जल निकासी की उचित व्यवस्था, पगी ईंटों की नालियां, कच्ची मिट्टी की ईंटों या सन ड्राइड ब्रिक्स का उपयोग घरेलू संरचनाओं में मिला है और 4:2:1 के अनुपात वाली ईंटों का प्रयोग मिला है। राखी गढ़ी की विशालता एवं विस्तार को देखते हुए इसे सिंधु सभ्यता की पूर्वी राजधानी माना जा सकता है। टीला संख्या 2 और 7 के उत्खनन में हमें सर्वाधिक आश्चर्य में डाला। टीला संख्या 2 से अर्ध बहुमूल्य पत्थरों या सेमी प्रीशियस स्टोन्स के मनकों का प्रतिशत पूर्व के उत्खननों की तुलना में बहुत अधिक है।
2: राखी गढ़ी से कई हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं। उत्खनन के दौरान अनेकों ऐसी छोटी छोटी चीजें प्राप्त हुई जो इस सभ्यता के लोग अपने दिनचर्या में उपयोग करते थे। प्रोफेसर अमर सिंह बताते हैं,
3: तांबे और सोने के आभूषण, पकी मिट्टी और सेलखड़ी से निर्मित मोहरे तथा मनके बनाने के केंद्र मिले हैं, जो इसके विकसित शहरी रूप को दर्शाते हैं। चाक पर बने मिट्टी के बर्तन, जिन पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रण, चर्ट पत्थर से बनी ब्लेड्स, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के अनेक प्रकार के मनके, पकी मिट्टी से निर्मित मनके, चूड़ियां, पशु या मानव की मूर्तियां, खिलौना गाड़ियां आदि भी प्रमुख रूप से मिले।
2: राखी गढ़ी वासी मामूली वस्तुओं से लेकर लैपिस लाजुली पत्थर से बने श्रृंगार के कीमती आभूषणों का अक्सर प्रयोग किया करते थे।
1: यहाँ से हमें कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, जास्पर आदि के मनके, सोने के मनके, चर्ट के ब्लेड, टेराकोटा एवं शेल की बैंगल्स, अंजन सलाखा आदि के साथ साथ करीब करीब 2 मीटर मोटी दीवारों की घरेलू संरचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। टीला संख्या 7 जो कि दफन स्थल या बरियल माउंड है, ये 7-8 मानव कंकाल मिले हैं, जिसमें एक मानव कंकाल के पास से 17 सोने के मनके, 2 सोने के फाइल और 42 मृदभाण मिले हैं, जो उस समय की समृद्ध सांस्कृतिक, समाधि परंपरा और आर्थिक संपन्नता को दर्शाते हैं।
0: अब प्रमाणित हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों में फैली अन्य सभ्यताओं के साथ मेलजोल होने के साथ साथ अच्छे व्यापारिक संबंध भी थे। राखी गढ़ी प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा होगा और यहाँ से भी दूर दूर तक व्यापार किया जाता होगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विकास पवार मानते हैं कि राखी गढ़ी के अन्य सभ्यताओं के साथ पारस्परिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे होंगे।
4: पुरातात्विक उत्खननों से अनेकों प्रकार के अर्धकीमती पत्थरों के मनके अवशेष रूप में मिले हैं, जिनका कच्चा माल राखी गढ़ी के आसपास नहीं मिला। ये कच्चा माल सुदूर हड़प्पा स्थलों तथा दूर विदेशी हड़प्पा पुरास्थलों से निर्यात किया जाता था। उदाहरण के रूप में शंख गुजरात से, तांबा राजस्थान में स्थित खेतरी की खानों से, राखी गढ़ी के उत्खननों में जो मानकीकृत बात पटकरे एवं मोहरे मिली हैं, उससे यह साबित होता है कि आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के नियम एक समान थे। विदेशी क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध के फलस्वरूप राखी गढ़ी का व्यापार क्षेत्र अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, ओमान और फारस की खाड़ी तक भी था। वहां से कच्चे माल

0: पत्थर अवशेष रूप में मिलते हैं। इस प्रकार राखीगढ़ी पुरास्थल का व्यापारिक मेलजोल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी क्षेत्रों तक था।
1: अब सवाल उठता है कि इस कांस्य युगीन सभ्यता का निर्माण करने वाले लोग कौन थे? ये लोग कहीं से आए होंगे या फिर यहीं के गांवों व नगरों के मूल निवासी रहे होंगे। राखीगढ़ी के टीला नंबर 7 से प्राचीन कंकाल मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इनका विस्तृत डीएनए अध्ययन व विश्लेषण किया है। एक महिला के प्राचीन कंकाल से माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए अध्ययन में U2B2 माइटोकॉन्ड्रिया हैप्लोग्रुप मिला है। डेक्कन कॉलेज के पूर्व कुलपति प्रोफेसर वसंत शिंदे का मानना है,
2: राखीगढ़ी में जो हड़प्पन कंकाल मिले हैं उनकी डेट लगभग 4,500 साल पुरानी है, तो उन लोगों का डीएनए सबसे प्रथम भारत में निकाला गया है। और इसके पहले हमको हड़प्पन लोग कौन थे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसमें मतभेद थे, कुछ लोग बोलते थे कि हड़प्पन लोग यहाँ के थे, कुछ लोग बोलते थे कि वो बाहर से सोपोटे में से आए होंगे, उन्होंने इस सभ्यता को विकसित किया होगा ऐसा मानते थे। लेकिन इस डीएनए से जिसका रिजल्ट हमने एक दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल है सेल, उसमें हम उसके रिजल्ट हमने पब्लिश किया है। और इसको एक दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जीनोमिक्स, उसने इसको अप्रूव किया है। और उन्होंने बोला कि 2019 में जो 9 ब्रेक थ्रू रिसर्चेस हुए थे दुनिया में उसमें राखीगढ़ी का जिक्र उन्होंने किया है। इसका मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो उसका रिजल्ट ये मिलता है कि हड़प्पन लोगों का जो जीन्स थे, जो डीएनए था, वो बहुत ही डिस्टिंक्ट था, जिसको हम एंशियंट एंसेस्टर साउथ इंडियन बोलते हैं। वो जीन्स था जिनकी शुरुआत लगभग 12,000 साल पहले हुई थी। 12,000 साल के बाद इसमें धीरे धीरे म्यूटेशन शुरू हो गया और एक डिस्टिंक्ट जीन तैयार हो गया, उसको हम एंशियंट एंसेस्टर साउथ इंडियन जीन्स बोलते हैं। और वही जीन्स हड़प्पन लोगों में आए। और ये जो जीन्स है वो प्योरली इंडिजिनस लोगों के जीन्स है, यहाँ के लोगों के जीन्स है। तो इसे पता चलता है कि हड़प्पन लोग थे, यहाँ के थे, ये पता चलता है। उसके बाद हमने ये भी किया कि हमने मॉडर्न लोगों का सैंपल्स लगभग 140 अलग अलग जो गुट है साउथ एशिया में, उनके सैंपल्स हमने 3,500 सैंपल्स मॉडर्न लोगों के सैंपल्स हमने इकट्ठा किया और उसका हमने विश्लेषण करके उसको हम हड़प्पन जो सैंपल्स मिले थे राखीगढ़ी उससे हमने जोड़ा, तो उससे पता चलता है कि साउथ एशिया के जो मेजर पॉपुलेशन है हमको एक इंडिकेशन मिलता है। अंडमान निकोबार से लेके लद्दाख कश्मीर तक और अफगानिस्तान से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट तक जो सब लोगों हड़प्पन लोगों के ही वंशज है इसका एक प्रमाण मिलता है। वो लोग क्या रिलीजन फॉलो करते हैं, क्या कास्ट फॉलो करते हैं, उसका कोई मायने नहीं रखता। लेकिन ये पता चलता है या एक अंदाज लगता है कि अभी के जो मॉडर्न लोग है वो हड़प्पन लोगों के वंशज है। तो ये कंटिन्यूटी हमको बात दिखाई देते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस हमको राखीगढ़ी से मिला है।
3: राखीगढ़ी की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जिसमें शिकार, मछली पकड़ने और संग्रहण के जरिए संसाधनों का कुशल प्रबंधन किया जाता था। कृषि आधारित पशुओं के साथ साथ जंगली जानवरों के होने के भी प्रमाण मिले हैं।
4: खुदाई से स्पष्ट होता है कि पालतू जानवर राखीगढ़ी में जीवन का केंद्र थे। महत्वपूर्ण पालतू जानवर गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर थे। इनका उपयोग आर्थिक और व्यवहारिक कार्यों के लिए भी होता था। गायों का उपयोग परिवहन के लिए और खेतों में काम करने के लिए किया जाता था। बैल और भैंस खेतों में हल चलाने और सामान ले जाने का कार्य करते थे। गाय और भैंस की गोबर भी एक बहुमूल्य संसाधन थी। लोग इसका उपयोग खेतों में खाद के रूप में, फर्श और दीवारों पर प्लास्टर के लिए और ईंधन के रूप में करते थे। इन अनेक उपयोगों से पालतू जानवर केवल खाने का स्रोत ही नहीं रहते, वे खेती, निर्माण और घरेलू जीवन के लिए अनिवार्य थे। भेड़ और बकरी से मांस, दूध और ऊन या बाल प्राप्त होते थे। सुअर भी पाए गए हैं, कुत्ते के अवशेष भी मिले हैं। संभव है कि ये साथियों पहरेदारों के रूप में कार्य करते थे, शिकार में मदद करते थे और बस्ती के आसपास कचरा प्रबंधन में भी सहायक रहे होंगे। पालतू जानवरों के साथ साथ जंगली जानवरों का भी महत्वपूर्ण स्थान। विभिन्न प्रकार के हिरण और एंटीलोप की हड्डियां बताती हैं कि शिकार ने पशु संसाधनों को पूरा किया। शिकार से मांस, छाल और अन्य सामग्री मिलती थी और यह घरेलू पशुओं से मिलने वाले संसाधनों की कमी को पूरा करता था। राखीगढ़ी के निवासियों ने जली और छोटे जानवरों का भी उपयोग किया। मछली पकड़ने जल स्रोतों से संग्रहण का संकेत देती हैं, जिससे उनकी भोजन में प्रोटीन और विविधता आई। पक्षियों के अवशेष हानि पक्षियों के शिकार या जाल में फंसाने का संकेत देते हैं। सरीसृप और शंखों के अवशेष नदियों, दलदली क्षेत्रों और संभवतः शंख शिल्प या व्यापार के उपयोग में की ओर भी इशारा करते हैं।
3: ये थे पंकज गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर, डेक्कन कॉलेज, पुणे।
1: लगभग 4,000

0: साल पहले सरस्वती नदी सूखने लग गई होगी। धीरे धीरे समस्त सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों में चहल पहल कम होती चली गई होगी। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों में इस सभ्यता के पतन के बारे में मतभेद हैं। डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण मानते हैं।
1: 8000 से 5000 ईसा पूर्व, जिसको आजकल कॉमन एरा कहते हैं, जलवायु के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया है कि जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश होती थी, बहुत ह्यूमिडिटी थी, बहुत बारिश होती थी 8000 से 3000 ईसा पूर्व। उसके बाद ही हड़प्पा सभ्यता आती है, उस वक्त भी काफी बारिश थी। तो ये है कि सिंधु नदी अपने सारे सहायकों के साथ, पांच नदियां पंजाब की, सिंध और सरस्वती, ये बहुत जल का भंडार लेके पहाड़ों से जाके आगे जाके समुद्र में जाती थी। वह समय था जब आदमी ने बस्ती बना के रहने लगा था। उसका प्रमाण मेहरगढ़ नाम के स्थान पर है। धीरे धीरे उन्नति होते हुए हड़प्पा संस्कृति, ये जो अर्बन सिविलाइजेशन हम कहते हैं, नागर सभ्यता का उद्भव होता है। और सारे जो प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान है, इन नदियों के किनारे ही बसे हैं, जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु के, हड़प्पा रावी के, और गवेरी वाला सरस्वती के, कालीबंगा सरस्वती के, बड़ा वाली सरस्वती के, और राखीगढ़ी, और तमाम बहुत सारे प्राचीन स्थान सरस्वती के किनारे बसे थे, जिसमें एक प्रमुख हमने बताया अभी जो राखीगढ़ी था, विशाल पांच विशाल तक नगरों में। फिर क्या होता है कि 3000 के बाद थोड़ा धीरे धीरे ये बारिश का कम होने लगती है। खैर इतनी कम नहीं होती, इन्होंने बहुत इंतजाम किया था हिंदू सभ्यता वालों ने तो, लेकिन उसके अंतिम चरणों में 2100 से 1900 के बीच काफी पानी कम हो गया। और 1900 ऐसा समय आया जब बिल्कुल बारिश का होना एकदम बंद हो गया। कभी फ्लैश फ्लड्स आते रहे होंगे, लेकिन एकदम जिसे कि एरिडिटी, एक्सट्रीम एरिडिटी हो गई। और उसी समय में ये सरस्वती, सरस्वती और ये इसकी सहायक नदियां सूखने लगी। और वही समय है जब इसके किनारे बसे हुए, जब साफ सिंध और इनके सब नदियों के किनारे बसे हुए प्राचीन नगर जो है, नगर और महानगर, ये उजड़ने लगे। यानी कि आज नागर सभ्यता का विखंडन हो रहा। लोग शहरों से क्या करते, भूतहा शहरों में रह के, इसलिए वो गांव की तरफ जत्थे बना के, कोई पूरब गया, कोई दक्षिण गया, कोई उत्तर की तरफ आया। तो इस ढंग से नागर सभ्यता का विघटन हो गया। तो जलवायु का बहुत बड़ा हाथ है सिंधु सभ्यता के विघटन में। और एक दूसरा कारण जिसके बारे में आजकल विद्वान नहीं बोलते हैं, 2100 के आसपास मेसोपोटामिया में पॉलिटिकल उथल पुथल हुई है। ये तो सभी जानते हैं कि मेसोपोटामिया और जिसे आजकल इराक कहते हैं, यहाँ भी एक नगर सभ्यता थी बहुत समृद्ध। वहाँ हड़प्पा वालों का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध उनसे था। जो वहाँ पॉलिटिकल उथल पुथल हुई, जिसे 50 से 80 साल तक कहते हैं, वो समय है जबकि हमारे व्यापार पर बहुत धक्का लगा। तो हमने जो उस व्यापार की वजह से, मतलब ये माइनिंग से लेके वस्तु बनाना और लॉजिस्टिक परिवहन वगैरह वगैरह, ये सब पे इतना धक्का लगा कि हड़प्पा की ये महानगर का विघटन होने लगा।
2: लेकिन इतिहास की खोज जितनी जरूरी है, उसका संरक्षण उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। हजारों वर्षों तक इतिहास को अपने गर्भ में सुरक्षित रखने वाले टीले, विशेषकर टीला नंबर 4 और टीला नंबर 6, आज आधुनिक अतिक्रमण और निर्माण का सामना कर रहे हैं। विकास और विरासत के संतुलन पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक युद्धवीर रावत के विचार।
3: ये सही, जहां भी खुदाई करता है या किसी स्मारक का विकास करता है, तो जरूर वहां के स्थानीय लोगों को एक तो ये सही की काम करने की पद्धति का पता चलता है, और उस ढंग से वो भी कई कामों में निपुण हो जाते हैं और उसमें अपना योगदान करते हैं। जैसे हम लोग वहाँ पर गई सामग्री वो स्थानीय बनाते हैं, खास करके खुदाई के लिए जो औजार होते हैं, उपकरण होते हैं, और स्थानीय लोगों को वहाँ पर ड्राइंग के लिए, सर्वेइंग के लिए हम उपयोग में लाते हैं और उनको सिखाया भी जाता है। साथ साथ उनको जो है विविध जो उपकरण हैं, जो इस चीज के जो है साधन है, उनके बारे में उनको जानकारी होती है। इसलिए उनका योगदान भी इसमें बढ़ जाता है। और खुदाई और अतिक्रमण को रोकने का जहां तक सवाल है, ये धीरे धीरे

0: हम लोगों ने कई ट्यूनों को प्रोटेक्शन किया है, उनकी हम जो है फेंसिंग कर रहे हैं और कई जो है ट्यूनों पे हम शेड लगा करके एक जीवंत जो है संग्रहालय बना रहे हैं ताकि लोग जान सके कि क्या क्या वहां पर है। तो उसमें भी इन लोगों का योगदान रहेगा और वहां पर जो है भविष्य में कई लोगों को जो है गाइड की और इस चीज की जो है जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों का उसमें बड़ा योगदान हो सकता है।
1: राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख नगर है। इस सभ्यता पर हरियाणा प्रदेश गौरवान्वित है। राखीगढ़ी में एक बड़ा संग्रहालय और हड़प्पन नॉलेज सेंटर बन रहा है। हरियाणा सरकार के पुरातात्विक विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार के अनुसार
2: राखीगढ़ी के टीलों पर राखी शाहपुर और रोकी था दो गांव बसे हुए हैं, जहां टीले प्राचीन संस्कृति के वाहक हैं और वर्तमान गांव हैं आधुनिक जीवन शैली को दर्शाते हैं। तो हरियाणा सरकार इन टीलों और वर्तमान गांव के माध्यम से हरियाणा की 10,000 साल की जो गौरवशाली यात्रा है उसको दिखाने का प्रयास कर रही है। प्राचीन समय में हरियाणा के लोगों की जीवन शैली ऐसी थी और वर्तमान समय में ऐसी थी और इस यात्रा में क्या क्या कंटिन्यूटी है और क्या क्या बदलाव हुए हैं इसको भी हम विश्व के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। राखीगढ़ी में 200 करोड़ की ज्यादा के लागत से एक विश्व स्तरीय म्यूजियम हरियाणा सरकार के माध्यम से बन रहा है और उसमें भी अतीत से वर्तमान की यात्रा है उस पर भी विशेष फोकस रखा गया है।
3: हरियाणा पुरातत्व विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार भविष्य में राखीगढ़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के प्रति आशान्वित हैं।
1: स्थानीय युवाओं को हेरिटेज गाइड के रूप में प्रशिक्षित करना और होम स्टे व सांस्कृतिक पर्यटन से जोड़ना ही इस स्थल को जीवंत बनाए रख सकता है। राखीगढ़ी केवल एक खुदाई स्थल नहीं, एक जीवंत गांव भी है, जहां अतीत और वर्तमान एक साथ सांस लेते हैं, जहां किसान अपने खेत जोतते हुए मिट्टी में दबे इतिहास को स्पर्श करते हैं। इस अनूठी सह अस्तित्व की भावना पर राखीगढ़ी के सरपंच दिनेश का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
4: हमारे गांव के आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन, महिलाएं सबको एक रोजगार के रूप में विकसित गांव धीरे धीरे हो रहा है। हमारे गांव को लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में विकसित करने के लिए हम पुरजोर प्रयास करते रहते हैं और एक एक्सपोजर मिलता है कि देश विदेश से घूमे हुए लोग हमारे यहाँ आते हैं, उनके आइडियाज हम हमारे साथ शेयर करते हैं और उनको हम एग्जीक्यूट भी करते हैं उन आइडिया को लेके। तो वैसे ही प्रयास में हमने मतलब एक पूरी बड़ी गाइड टीम को विकसित किया है राखीगढ़ी में, ट्रेडिशनल फूड बनाने वाली महिलाओं को विकसित किया है और हमारे जो क्राफ्टमैन है उनका तो कहना ही अलग है। हमारे गांव की कई महिलाओं की दरिया बाहर के कंट्री में बहुत डिमांडिंग है। हमारे गांव की लेडीज जो रोटी बनाने के लिए बोहिया बनाते हैं सरकंडे और पन्नी के, वो बहुत फेमस है। महिलाएं हमारी बाहर के बड़े स्कूल्स में क्राफ्ट वर्कशॉप के लिए जाने लगी है। आगे के प्लान के तौर पे हम हमारे गांव के 200 साल पुरानी चौपाल को एक लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में देख रहे हैं, कुछ हवेलियों को बाहर के लोगों के साथ मिलकर विकसित कर रहे हैं।
3: राखीगढ़ी कभी विशाल महानगर रहा होगा, राखीगढ़ी का पूरा रहस्य अभी धरती के गर्भ में ही छिपा है। अभी तो उन रहस्यों से भी पर्दा उठना बाकी है जो लिपि को पढ़ने का मार्ग दिखाएंगे। युवा पुरातत्वविद डॉक्टर दिशा अहलूवालिया ने समय समय पर हुए उत्खनन कार्यों में भाग लिया है। खुदाई के दौरान उन्होंने करीबन 400 मिट्टी की ईंटें निकाली थी। दिशा अहलूवालिया का मानना है कि अभी बहुत काम होना बाकी है।
5: अभी बहुत बड़ा हिस्सा है राखीगढ़ी का जो कि हिंटरलैंड एरिया भी है। हमें नहीं पता है कि सिटी का छोर कहाँ खत्म हो रहा था और उसका सैटेलाइट एरिया कहाँ शुरू हो रहा था। हमें अभी तक जो जानकारी है वो स्टैटिग्राफी और जो कितने सालों तक वहाँ ऑक्यूपेशन रहा है हमें वो पता है, बट कितना और बड़ा सेटलमेंट हो सकता है हमें उसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं है। धोलावीरा के जैसे एक हाइड्रोलिक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। राखीगढ़ी में जो बड़े बड़े ड्रेन्स मिलते हैं, हमें वेल्स मिलते हैं और जो लास्ट एविडेंस टैंक का मिला था वो ये बताता है कि एक बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हाइड्रोलिक सिस्टम है, पर अनफॉर्चुनेटली हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट ये मान सकते हैं कि ऐसे बहुत छोटे छोटे जो लोग को लगे कि बहुत छोटी जानकारी है बट रिसर्च के लिए बहुत

0: बड़ी जानकारी हो सकती है। राखीगढ़ी में लोग कैसे रहते थे, उनका सिस्टम कैसा था, ड्रेनेज सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, उनका यू नो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था, उनका सिटी का लिमिट कितना बड़ा था, फोर्टिफिकेशन था नहीं था, बैस्टियंस थे, डबल फोर्टिफिकेशन था, सिंगल फोर्टिफिकेशन था, ये सब जानकारी अभी जाननी जरूरी है। बैरियर्स अभी भी एक्सकवेट हो रहे हैं, बट उसके अलावा भी हमें ये आगे इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है कि जो जहां बैरियर्स हो रहे हैं, माउंट सेवन जिसको बोला जाता है, जहां मचो हरप्पन बैरियर्स मिलते हैं, वहां पे जो अर्ली एविडेंस मिले हैं अर्ली हरप्पन के, ये दर्शाता है कि जो अर्ली हरप्पन लेवल जो है वो काफी बड़ा रहा है। तो अर्लीस्ट एविडेंस जो साइट पे मिलता है उसका स्केल जानना, वहां से लेके मचौर तक कैसे सेटलमेंट चेंज हुआ है, कैसे सिटी डेवलप हुई है, ये सब बातें जो है, ये कहानी जो है अभी भी बाकी है।
1: उनका ये भी मानना है कि जैसे जैसे तकनीक उन्नत होगी इस पुरातात्विक स्थल को और अच्छे से समझा व जाना जाएगा।
0: GPR मैग्नेटोमेट्री ऑलरेडी प्रोफेसर वसंत शिंदे ने किया है, बट उसके अलावा रिमोट सेंसिंग है, टेस्ट पिट्स ले सकते हैं, फील्ड वॉकिंग है, कई ऐसी टेक्निक्स हैं आगे फ्यूचर में आएंगी जो हमें ये एविडेंस बहुत क्लियरली बताएंगी। बट एज ऑफ नाउ अभी हम रिमोट सेंसिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर हम उस पे काफी मेहनत करें, और सैटेलाइट इमेजरी और स्पेशल एविडेंस के हिसाब से हम जान सकते हैं कि इंडिकेशन लगा सकते हैं साइट के बारे में।
2: राखीगढ़ी की मिट्टी में दबी हर पक्की ईंट एक गाथा सुनाती है, हर मन का एक हुनरमंद हाथ की कहानी कहता है, और हर अवशेष उस महान मानव जीवन का साक्ष्य है।
1: सवाल बस इतना है, क्या हम इतिहास की इस पुकार को सुनने के लिए तैयार हैं?
3: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना रूपक, राखीगढ़ी मिट्टी के नीचे सोया महानगर। आलेख डॉक्टर अप्पू सहारण का था, वाचन स्वर उषा मलिक व पंकज भारद्वाज का था, कार्यक्रम का संपादन दिलीप अहिरवार ने किया, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रोहतक के सौजन्य से प्राप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है। रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज के प्रसारण में अब हम आपके लिए श्री एनआर प्रशांत का कर्नाटक शास्त्रीय गायन प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट ब्रॉडकास्ट ऑफ रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी विल नाउ ब्रिंग यू द कर्नाटक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एनआर प्रशांत।
0: श्री एनआर प्रशांत कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के एक प्रतिष्ठित गायक हैं, जो संगीत क्षेत्र में अपने अभिनव और शोध आधारित असाधारण योगदान के लिए जाने जाते हैं। श्री एनआर प्रशांत की संगीतमय यात्रा का शुभारंभ बेंगलुरु में विद्वान आरके पद्मनाभ के मार्गदर्शन में हुआ। श्री तिट्टे कृष्णयंगार जैसी महान विभूतियों से प्रेरित होकर आपने विदुषी नीला रामगोपाल के सानिध्य में अपना गहन प्रशिक्षण जारी रखा। तत्पश्चात प्रोफेसर आर विश्वेश्वरन जी के आदरणीय मार्गदर्शन में आपने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की सूक्ष्म बारीकियों की गहरी समझ प्राप्त की। आपने मैसूर विश्वविद्यालय से इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की थी। आप वर्तमान में आकाशवाणी के प्रतिष्ठित ए ग्रेड कलाकार हैं। आपकी संगीतमय यात्रा की एक विशेष और अद्वितीय उपलब्धि एक राग संगीत सभाओं का सफलतापूर्वक संचालन करना है। वर्ष 2001 में आपको सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी में वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में आमंत्रित एवं नियुक्त किया गया था।
1: श्री एनआर प्रशांत इज अ डिस्टिंग्विश्ड वोकलिस्ट इन कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक रिनाउंड फॉर हिज इनोवेटिव एंड रिसर्च ओरिएंटेड एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड। श्री एनआर प्रशांत म्यूजिकल जर्नी कमेंस्ड इन बेंगलुरु अंडर द गाइडेंस ऑफ

0: लीजिए अब आप सुनिए मैसूर वासुदेवाचार्य के कृति देव रमे मामवाब्दि तनये, जो राग वसंत तथा आदिताल में निबद्ध हैं।
1: यू विल नाउ लिसन टू अ कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार्य देवी रमे मामवाब्दि तनये इन द राग वसंता सेट टू आदिताल।

0: श्री एनआर प्रशांत अपने गायन को जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रहे हैं रामनाथपुरम श्रीनिवास अय्यंगार की एक रचना परम पावन रामा, जो राग पूर्वी कल्याणी आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वोकल रिसाइटल, श्री एनआर प्रशांत विल नाउ प्रेजेंट अ कंपोजिशन ऑफ रामनाथपुरम श्रीनिवास अय्यंगार परम पावन रामा इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू आदिताल।

0: इसके साथ ही रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनआर प्रशांत का कर्नाटक शास्त्रीय गायन अब संपन्न होता है। संगत करने वाले थे वायलिन पर सीवी श्रुति, मृदंगम पर ए राधेश और घटम पर शरद कौशिक।
1: विद दैट वी कंक्लूड द कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एनआर प्रशांत इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। He was accompanied on the violin by C.V. Shruti, on the mridangam by A. Radhesh, and on the ghatam by Sharad Kaushik.
0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी के मैसूर केंद्र पर की गई और इसे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: This program was recorded at the studios of Akashvani Mysuru, and the broadcast came to you from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात

0: नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार

0: फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उनके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 8 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इससे 1.5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। परिवहन मंत्री डूडी पूर्वा गांधी ने बताया कि अब तक 712 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जकार्ता के सोकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज सुबह अनाक क्राकाटाओ ज्वालामुखी से निकली राख के हवाई क्षेत्र में पाए जाने के बाद सबसे पहले परिचालन निलंबित किया। चीन के शेंझेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी के चीन के हे जी टिंग और रेयान जियांग यू को हराया। इस वर्ष यह उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Aditi Lumba. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the mishap site and took stock of the situation. Talking to media after the visit, Ms. Gupta said relief and rescue operations are continuing on a war footing. She said those found responsible for the incident will not be spared. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. Talking to media, Inspector General of the National Disaster Response Force, NS Bundela, said that 2 NDRF teams comprising 70 personnel are currently working on the site. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the incident. Union Home Minister Amit Shah said he spoke with the Delhi Chief Minister, Delhi Police Commissioner and the Director General of NDRF and took stock of the situation. Union Home Minister Amit Shah has said the government has prepared a 3-year roadmap to make country drug-free by 2029. He said the roadmap will be based on a 4-pillar approach aimed at dismantling narcotics networks. Mr. Shah was addressing a press conference at Panaji in Goa. He said a drug-free youth will play a crucial role in achieving the vision of a developed India by 2047.
2: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया है।
3: We have prepared a road map to make India drug-free by 2029. We have identified the period from 2026 to 2029 as a mission mode period with clearly defined timelines and targets. Our vision document is based on 4 key pillars. First, intelligence and operations-based enforcement. Second, effective control over precursors and synthetic drugs. Third, demand reduction and harm reduction. And fourth, capacity building and cooperation.
1: Vice President C.P. Radhakrishnan today urged students to stay away from drugs